0: ई रेडियो नेपाल ठिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल महिलाका क्षमता, सृजनशीलता आ नेतृत्वकेँ राष्ट्र निर्माणक मुख्य आधारक रूपमे स्थापित कऽ देशक समृद्धि तथा स्थायी विकास हासिल करब आजुक आवश्यकता भेल बतौलनि अछि। महिला अधिकारक सम्मान, आत्मनिर्भरता आ समृद्धिक अभियान आदर्श वाक्यक संग आइ मनाबऽ लागल। आठम राष्ट्रीय महिला अधिकार दिवस के अवसर पर देश तथा विदेश में रहल संपूर्ण नेपाली दीदी बहिन में शुभकामना व्यक्त करैत राष्ट्रपति पौडेल कहलनि अछि जे महिला ऊपर होबय वाला सब प्रकारक विभेद, हिंसा तथा असमानता के अंत करैत सम्मानजनक आ सुरक्षित समाज निर्माण करब हमरा सभक साझा दायित्व थिक। घर, समाज, कार्यस्थल आ निर्णय प्रक्रिया में महिलाक अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करित लैंगिक समानता प्रवर्धन करब राज्य तथा नागरिक समाज बीच सहकार सुदृढ़ होबाक आवश्यकता देखल जाइत अछि। राष्ट्रपति पौडेल दिवस के अवसर पर महिलाक हक अधिकार सुनिश्चित करबाक लेल योगदान कनिहार संबंधित सबके स्मरण करैत धन्यवाद सेहो व्यक्त कयलनि अछि। विक्रम संवत 2063 साल जेठ 16 गते तत्कालीन पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभा नेपाली महिलाक अधिकार संबंधी महत्वपूर्ण 4 विशेष प्रस्ताव पारित कयल। दिन के स्मरण करैत हरेक साल जेठ 16 गते के राष्ट्रीय महिला अधिकार दिवस के रूप में मनबित आयल देखल गेल अछि। महिलाक अधिकार के सुनिश्चितता प्रदान करैत लैंगिक समानता कायम करबाक लेल विगत में भेल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के एहि दिवस सँ आओर सम्मान आ पहचानक संग थप ऊर्जा प्रदान करबाक राष्ट्रपति पौडेलक विश्वास अछि। राष्ट्रपति पौडेल महिलाक श्रम, सीप, सृजनशीलता आ क्षमता के विकास प्रक्रियाक मूल प्रवाह में समाहित कऽ आत्मनिर्भर बनेबाक लेल स्रोत, साधन एवं अवसर पर समान पहुँच स्थापित करबाक तथा निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता वृद्धि करबाक सरकारक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भऽ रहल उल्लेख करैत आजुक नेपाली महिला शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, राजनीति, प्रशासन, कला तथा उद्यमक क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल कयल बतौलनि अछि। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव महिला के अपन अधिकार संबंध में सचेत बनबैत नेतृत्व, शिक्षा, उद्यमशीलता आ सामाजिक योगदान में सहभागी करबाक वातावरण निर्माण कयल जेबाक आवश्यकता बतौलनि अछि। आठम राष्ट्र महिला अधिकार दिवस 2083 के अवसर पर आई देश तथा विदेश में रहल संपूर्ण नेपाली दीदी बहिन में हार्दिक बधाई सहित सुख, शांति, समृद्धि, उत्तरोत्तर प्रगतिक लेल शुभकामना व्यक्त करैत ओ ई आवश्यकता बतौलनि अछि। उपराष्ट्रपति यादव महिला ऊपर होबय वाला सब प्रकारक हिंसा, विभेद, असमानता विरुद्ध सामूहिक आवाज उठेबाक अवसर के रूप में एहिके दिवस के लऽ आ सकबाक उल्लेख करैत संविधान में उल्लेखित लैंगिक समानताक प्रावधान के व्यवहार में उतारबाक लेल तथा सामाजिक चेतना फैलबाक लेल ई दिवस महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत आयल बतौलनि अछि। संपत्ति में समान हक, स्थानीय तह में महिला का अनिवार्य प्रतिनिधित्व, राष्ट्रसभा में प्रत्येक प्रदेश सँ लगभग 3 महिलाक सहभागिता तथा समानुपातिक प्रणाली मार्फत प्रतिनिधि सभा में 1/3 महिलाक सुनिश्चितता इस संवैधानिक व्यवस्था सँ महिलाक अधिकार के संस्थागत बनाओल उपराष्ट्रपति यादव के कथन रहल अछि। महिला अधिकारक क्षेत्र में भेल ऐतिहासिक उपलब्धिक सम्मान स्वरूप हरेक वर्ष जेठ 16 गते ई दिवस विभिन्न कार्यक्रमक आयोजन कऽ मनाओल जाइत अछि। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह महिला अधिकार, लैंगिक समानता आ महिला सशक्तिकरण के व्यवहारिक रूप में कार्यान्वयन करबाक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। आठम राष्ट्र महिला अधिकार दिवस के अवसर पर देल गेल शुभकामना संदेश में ओ नेपालक संविधान द्वारा महिला का हक के मौलिक हकक रूप में सुनिश्चित करैत राज्यक सब निकाय में समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व, अर्थपूर्ण सहभागिताक प्रत्याभूति कयल उल्लेख कयलनि अछि। प्रधानमंत्री शाह बाल विवाह, डैन प्रथा, छाउपरी, दहेज तथा तिलक सहितक कुप्रथा तथा लैंगिक, घरेलू आ डिजिटल हिंसाक अंत के लेल कानूनी व्यवस्थाक संगे सामाजिक चेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहल बतौलनि अछि। महिला अधिकारक संरक्षण प्रवर्धन के लेल राज्य, समुदाय तथा सरोकार वाला सब पक्षक सक्रिय सहकार आवश्यक रहला पर ओ जोर दिलनि। प्रधानमंत्री आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूप में पाछू पड़ल महिलाक सशक्तिकरण मार्फत आत्मनिर्भर आ समृद्ध समाज निर्माण कयल जेबाक बात पर जोर दैत महिला विरुद्ध होमय वाला सब प्रकारक हिंसा, शोषण आ भेदभाव अंत करबाक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल संदेश में उल्लेख कयलनि अछि। एहि अवसर पर जारी कयल गेल शुभकामना संदेश मे महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता वादी महिला अधिकारक संरक्षण लैंगिक समानता सामाजिक रूपांतरणक लेल राज्य समुदाय तथा नागरिक समाज बीच सहकार आवश्यक रहल बतौलनि अछि। संदेश मे ओ संविधान द्वारा सुनिश्चित कयल महिला अधिकार के व्यवहार मे पूर्ण रूप मे कार्यान्वयन करबाक लेल सभ पक्षक प्रतिबद्धता सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहल उल्लेख कयलनि अछि। ओ महिला अधिकारक विषय मे केवल कानूनी व्यवस्था व नीतिगत घोषणा सीमित नहि भ सामाजिक व्यवहार अवसर के समान पहुँच सम्मानजनक सहभागिता सँ जुड़ल गेल विषय भेल बतौलनि अछि। एहि वर्ष राष्ट्रीय महिला अधिकार दिवस महिला अधिकारक सम्मान आत्मनिर्भरता आ समृद्धिक अभियान नाराक संग मनाओल जा रहल अछि। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल देश के समृद्ध सुशासित आ भ्रष्टाचार मुक्त बनेबाक लेल सब क्षेत्रक सक्रिय भूमिका आवश्यक रहल बतौलनि अछि। आइ काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करैत ओ सरकार गलत दिस गेला पर कर संपादन में ढिलाई भेला पर घंटी बजा कर सचेत करेबाक लेल सरोकार बाला के आग्रह कयलनि। सभामुख अर्याल कानून निर्माण प्रक्रिया में रचनात्मक सुझाव देबाक लेल सरकारक कमजोरी प्रति समय में सजग करेबाक लेल सेहो जोर देलनि। निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन करैत लगानी मैत्री वातावरण सृजना कयल जेबाक बात पर जोर दैत सभामुख अर्याल वैदेशिक रोजगारी में रहल युवा के स्वदेश वापस करबाक अवस्था का निर्माण कयल जेबाक आ नेपाल के लगानी के लेल उपयुक्त राष्ट्रक रूप में विकास कयल जेबाक बात बतौलनि। ओ नेपालक प्राकृतिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक संपदा सब के विश्व समक्ष प्रभावकारी रूप में प्रवर्धन कयल जेबाक चर्चा करैत लुम्बिनी सगरमाथा पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ जानकी मंदिर तथा पाथीभरा सन गंतव्य सब नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के प्रमुख केंद्र बनाओल जा सकबाक उल्लेख कयलनि। सभामुख अर्याल देशक संविधान के समानुकूल बनेबाक लेल आवश्यक सुधार संशोधनक विषय में सेहो ठोस सुझाव देबाक लेल आह्वान कयलनि। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा निर्वाचनक क्रम में जनता समक्ष कयल गेल प्रतिबद्धता कार्यान्वयन करब सरकार जनप्रतिनिधि सभक प्रमुख दायित्व रहल चर्चा करैत वर्तमान सरकार ओहि दिस दृढ़तापूर्वक आगू बढ़ रहल बतौलनि अछि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपाक प्रथम पालिका अधिवेशनक अवसर पर तादी गांव पालिका वार्ड नंबर 5 में आयोजित कार्यक्रम में संचार मंत्री तिमिल सिन्हा आवला आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए प्रस्तुत कयल गेल बजट युवा पुस्ताक सुशासन समृद्धि आ परिवर्तनक आकांक्षा के संबोधन करवासन निर्माण कयल गेल दावी कयलनि। ओ बजट सँ देशक अर्थतंत्र के अगला दिन में कोन दिशा दिस आगू बढ़ेबाक से स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत कयल उल्लेख करैत सरकारक प्राथमिकता राजस्व नीति तथा दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोण सँ सेहो स्पष्ट रूप में समेटल गेल बतौलनि। सरकार अगला आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट मार्फत मध्य प्रदेश तथा तराई प्रदेश क्षेत्र सहितक कृषि पूर्वाधार खाने पानी स्वास्थ्य खेलकूद पर्यटन क्षेत्रक विभिन्न महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आगू बढ़ौलक अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले प्रस्तुत कयल गेल बजट वक्तव्य में मध्य के उत्पादन कनेक्टिविटी आ सांस्कृतिक पर्यटन के केंद्रक रूप में विकास करबाक लक्ष्य प्रस्तुत कयल गेल अछि। सरकार सुनकोसी मरीन डाइवर्सन योजना सँ सिंचित होबयवला 122,000 हेक्टर क्षेत्र के आधार बनाकर मध्य मधेश चतुर्भुज निर्माण करबाक घोषणा कयलक अछि। हालांकि राजमार्ग आ पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारक बाकी काम सम्पन्न कर कृषि तथा उद्योग प्रवर्धन कयल जेबाक उल्लेख कयल गेल अछि। सरकार हालांकि राजमार्ग 3 वर्ष भीतर सम्पन्न करबाक लक्ष्य लेल जनौलक अछि। घना बस्ती क्षेत्र में सड़क चौड़ा करबाक आ 8 सड़क पुल निर्माण सम्पन्न करबा सन 4,65,00,00,000 टका बजट छुटियौलक अछि। रेल पूर्वाधार दिस वर्दीवास काठमांडू तराई मधेश दूतमार्ग प्रस्थान बिंदु धरि रेल मार्ग विस्तार कयल जायत। निर्माणाधीन जनकपुर जयनगर वर्दीवास रेल मार्गक बाकी काज सम्पन्न करबाक लेल सेहो बजट विनियोजन कयल गेल अछि। तराई मधेश क्षेत्र में सूखा समय में होबयवला पेयजल अभाव समाधान करबाक लेल डीप बोरिंग सहितक सामुदायिक पेयजल प्रणाली विकास कयल जायत। अधूरा रहल 280 पेयजल आयोजना सम्पन्न करबाक लेल 2,50,00,00,000 टका विनियोजन कयल गेल अछि। सिंचाई दिस बागमती सिंचाई योजनाक अश्रोन्नतिक 12 रोधर सरलाही महतरी आ धनसाक 122,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमीन में सिंचाई सुविधा विस्तार करबाक लेल 53,00,00,000 टका छुटियाओल गेल अछि। कमला आ नारायणी सिंचाई प्रणालीक मरम्मत तथा पुनर्स्थापनाक संगहि भूमिगत सिंचाई सुविधा विस्तार करबाक लेल 1,03,00,00,000 टका विनियोजन कयल गेल अछि। खेलकूद पूर्वाधार अंतर्गत लहान बीरगंज में आधुनिक संरचना निर्माण तथा मध्य प्रदेश में प्रस्तावित 11वां राष्ट्रीय खेलकूदक लेल आवश्यक पूर्वाधार विकास कैल जायवला भेल अछि। कृषि प्रशोधन उद्योग दिस सिरहा आ सप्तरी में आंप प्रशोधन केन्द्र तथा सरलाही में टमाटर प्रशोधन केन्द्र स्थापना करबाक लेल घोषणा कैल गेल अछि। संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्धनक लेल जनकपुर के विवाह गंतव्यक रूप में विकास आ ब्रांडिंग कैल जात। रामदान की पथ तथा रामदान की परिक्रमा सड़क स्वर्णतिक लेल बजट विनियोजन कैल गेल अछि। जनकपुर धाम के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करबाक प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक तथा शंखरा धनसाधाम गढ़ीमाई प्रादेशिक पर्यटकीय कॉरिडोर विकास कैल जेबाक सरकारक योजना अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषामे समाचार समाप्त भेल।
1: नेपालले धुम्रपान वा सुर्ती दक्षी सुई पेडो मनोत सिना चङ्गो दु तर ठो लट टोटी फै
2: छि थो लट टोटी गु खसा थौ हे गोप्पे ओ काम वाक नेनी गु सेवा क्विटल्यान्ड 11:32 स्वापु तया दिस
3: थो सेवा ज्याकु इले का फै
2: वाचाका दिस धुम्रपान ओ सुर्तिया लट टोटी त नेनिगु सेवा क्विटल्यान्ड 11:32
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र टेकु ये।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। अगले आर्थिक वर्ष का बजट युवाओं की सुशासन, समृद्धि और परिवर्तन की आकांक्षाओं को पूरा करेगा, विभिन्न विशेषज्ञों का कथन। भारत उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बचाए गए 453 नेपाली नागरिक, बिलहिया सीमा मार्ग से पहुंचे नेपाल। हिमालयी संरक्षण पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामबरन यादव का कथन। और वियतनाम ने संसदीय चुनाव के अवसर पर विदेशियों सहित लगभग 10,000 कैदियों को किया रिहा। अब समाचार विस्तार से। आगामी आर्थिक वर्ष के लिए नेपाल सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में शिक्षा क्षेत्र में पूर्वाधार के विकास, नीतिगत सुधार, प्रविधि के उपयोग और सुशासन के मुद्दों को महत्व दिए जाने की बात विशेषज्ञों और सरोकार वालों ने कही है। विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षा में AI का उपयोग और सूचना प्रविधि की अवधारणा से 21वीं सदी के लिए नेपाली बच्चों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का अवसर मिलेगा। काठमांडू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एजुकेशन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर बालचंद्र लुइटेल ने कहा कि बजट में शिक्षा में कुछ पूर्वाधार और सुधार के पहलुओं को शामिल करने से शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और यदि सुशासन कायम किया गया तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और शिक्षाविद डॉक्टर मन प्रसाद वागले ने आशा व्यक्त की कि इससे नेपाली बच्चों को समयानुकूल तकनीकी रूप में सक्षम बनने का अवसर मिलेगा और गणित, विज्ञान तथा प्रविधि में सुधार होगा। नेपाल शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का 20% आवंटन की मांग लंबे समय से उठती रही है, जबकि वर्तमान में केवल 10.27% बजट निर्धारित किया गया है। सरकार ने सुगम यातायात संचालन के लिए आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में सुरंग मार्ग को विशेष प्राथमिकता देते हुए और अधिक स्थानों पर सुरंग निर्माण की योजना आगे बढ़ाई है। देश में नागढूंगा नौवीं से सुरंग मार्ग का निर्माण पूरा होकर संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी तैयारी चल रही है, जबकि सिद्ध बाबा सुरंग मार्ग का निर्माण पूरा कर आगामी आश्विन से संचालन में लाने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच सरकार ने अन्य स्थानों पर भी सुरंग निर्माण की योजना आगे बढ़ाई है। काठमांडू तराई मधेस द्रुत मार्ग में भी 6 सुरंगों का निर्माण कार्य चल रहा है। सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में टोखा चहरे सुरंग मार्ग का विस्तृत संभाव्यता अध्ययन शामिल किया है। साथ ही करलाली क्षेत्र के जीवन को आसान बनाने के लिए जाजरकोट के मूल मास से जुमला के टोपला तक सुरंग मार्ग की संभाव्यता अध्ययन करने की योजना भी बजट में शामिल की गई है। खुरकुट चियाबारी, थानकोट, चितलांग, मझीमटार, शक्तिखोर और चीसा पानी बबई सुरंग निर्माण से संबंधित अध्ययन करने का भी उल्लेख किया गया है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि चुनाव के दौरान जनता के सामने किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रथम पालिका अधिवेशन के अवसर पर नुआकोट के तादी गांव पालिका 5 में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए प्रस्तुत बजट युवा पीढ़ी की सुशासन, समृद्धि और परिवर्तन की आकांक्षाओं को संबोधित करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि नीतिगत सुधारों के माध्यम से विकास प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, संतुलित और समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है तथा समानुपातिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बचाए गए 453 नेपाली नागरिकों को आज रूपनदेही के बिलहिया नाका से नेपाल लाया गया है। उद्धार किए गए नेपाली नागरिकों को 8 भारतीय वर्षों के माध्यम से सुनौली बिलहिया नाका होकर भैरवा लाया जा गया है, जहां उनका विवरण संकलन, स्क्रीनिंग और पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है। यह जानकारी जिला पुलिस कार्यालय रूपनदेही के प्रमुख SP जनक बहादुर शाही ने दी। उन्होंने बताया कि उद्धार किए गए लोगों में कुछ लोग लापता पाए गए थे, कुछ लोग भटके हुए थे और कुछ को विभिन्न प्रलोभन देकर भारत ले जाया गया होने की आशंका है। उनके अनुसार आधे से अधिक उद्धार किए गए लोग महिलाएं हैं। जांच के बाद पीड़ितों को उनके परिजनों को सौंपकर घर भेजा जाएगा और इस मामले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव ने कहा है कि हिमालय क्षेत्र का संरक्षण केवल नेपाल की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की साझा जिम्मेदारी है। AMS एवरेस्ट टूरिज्म अवार्ड 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय हिमनदियों और पारिस्थितिकीय प्रणाली पर पड़ रहे प्रभावों पर चिंता व्यक्त की और इनके संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G